राशि दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की एक तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी और सुश्री शिखा देका, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, ममता उद्घोषक श्री संजय ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन थामू। आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं अब से जल्दी पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: Aaj yahan kareeb 18,000 crore rupees ki vikas pariyojanaon ka shubharambh, lokarpan aur shilanyas hua hai. Airport ke saath saath ye project Andhra ki road connectivity se bhi jude hai. Inme energy security se jude project bhi hai. Ye vikas karya इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है.
0: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है. इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है. कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे.
0: Mr. Modi said the center is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernized. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे. आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है. मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं.
0: आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू प्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडरशिप.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता

0: अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और

0: परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खोर्धा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और

0: ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए अनुप जलोटा की आवाज में चंद हिंदी भजन।

गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुप जलोटा के आवाज में चंद हिंदी भजन, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना जारी है, इन्हें कलाकार

श्रोताओं, अभी आपने सुना अनुप जलोटा के आवाज में जन हिंदी भजन। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए चंद आधुनिक कालो गीतों का मर्तो कंदक के आवाज में।

श्रोताओं इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं मर्तो कंदक की आवास में चंद आधुनिक कालो गीतों का विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे मार्तो कंदक और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कालों गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। मेरी बात के आज के इस अंक में सुनिए पीएम श्री जेएनवी तवांग स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्रा यशील हमू से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर एक वार्ता।
1: दुनिया तो सिर्फ हाल पूछती है, दुनिया तो सिर्फ हाल ही पूछती है, फिक्र तो सिर्फ अपने माँ बाप करते हैं। ताशी दिले आप सभी को, मैं यशील हमू पीएम श्री जेएनवी तवांग कक्षा 8वीं की छात्र, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया। माँ और पिता हमारे जीवन के दीपक होते हैं जो अंधेरे में भी सही रास्ते दिखाते हैं। जब वे हमारे साथ होते हैं तब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं तब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। माता पिता के मृत्यु के बाद जीवन अचानक बदल जाता है। पहले जिन बातों में उनकी सलाह मिलती थी अब उन फैसलों को बोझ हमें खुद उठाना पड़ता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। माँ और पिता केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, वे हमारे पहले गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। जब हमारे साथ होते हैं तब हम उनकी मौजूदगी को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब उनके जीवन और संघर्ष का असली महत्व समझ आता है। माता पिता की मृत्यु मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। ऐसा लगा जैसे जीवन की दिशा ही बदल गई हो। हर कदम पर उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन समय के साथ मैंने यह समझा कि वे हमें कमजोर दिखाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। जब तक वे हमारे साथ रहते थे तब तक हमें उनके महत्व का पूरा एहसास नहीं होता, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जब मैंने अपने माता पिता को खोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा सहारा छिन गया हो। उनकी आवाज, उनकी सलाह और उनका प्रेम हर पल याद आने लगा। इस दुख ने मुझे गहराइयों से तोड़ दिया, लेकिन इसी दुख ने मुझे जीवन को समझने भी सिखाया। इस अनुभव ने मैंने सबसे पहले सीख यह ली कि समय बहुत कीमती होता है। हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अक्सर हम व्यस्त जीवन में उन्हें समय नहीं दे पाते और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। माता पिता की मृत्यु ने मुझे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। अब जीवन के हर निर्णय मुझे स्वयं लेने पड़ते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने जो संसार दिया है वही आज मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अनुभव ने मुझे दूसरों के दुख को समझने की हिम्मत भी दी। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जिसने अपने माता या पिता को खोया है तो मैं उसकी दर्द को महसूस कर पाती हूँ। इससे मेरे अंदर करुणा, संवेदनशीलता और मानवता की भावना और मजबूत हुई होती है। इस दुख से मैंने सीखा कि जीवन में कोई भी स्थाई नहीं है, हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। माता पिता हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, उनका त्याग और संघर्ष हमें अवसर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी हर छोटी बात याद आती है। माता पिता भले ही आज हमारे साथ शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी सीख, उनके संस्कार और उनके सपने हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनका सच्चा सम्मान यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले और एक

0: अच्छा इंसान बने। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ पिता का प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें उनके जीवन रहते ही उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें ही शेष रह जाते हैं। मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने माता पिता के प्रेम में। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जैनवी तवंग के 8वीं कक्षा के छात्रा यशील हामू से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर एक वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले सुनिए RBI द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम नारी संगीत का, जिसके तहत हम पेश करेंगे चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमे, जो कि होंगे महिलाओं पर आधारित। तो लीजिए, पहला नगमा प्रस्तुत है जब हैरी मेट सेजल फिल्म से सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया के आवाजों में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा सुनिए। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहापात्रा की आवाजों में कुमार द्वारा शब्दबद्ध इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रस्तुत है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इस गीत को रचा है इरशाद कामिल ने और संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंदा महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत के तहत। इसी के साथ ही अब यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो चलिए साथियों, अब प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम गीत मंजरी को, जिसके तहत हम आनंद लेंगे चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। तो लीजिए पहला आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमा प्रस्तुत है ऊंचाई फिल्म से नक्श अजीज के आवाज में। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की आवाज में प्रस्तुत है कार्यक्रम का दूसरा नगमा, जिसे रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने। और यह गाना हमने चुना है ब्रह्मास्त्र फिल्म से।

दिया मोहित चौहान की आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है कौशल मुनीर ने और संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनते हैं रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर के आवाजों में। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार कौशिक आकाश और गुड्डू।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस आधुनिक फिल्मी नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आनंद लेते हैं जब वी मेट फिल्म से शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाजों में एक बेहद खूबसूरत से गीत का, जिसे शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला नगमा प्रस्तुत है मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के आवाजों में। गीत को रचा है कुमार ने और संगीत से संवारा है विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया एक विलन फिल्म से एक गीत का, अंकित तिवारी के आवाज में, जिसे शब्दों में पिरोया है मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सवारा है स्वयं गायक अंकित तिवारी ने। तो लीजिए, कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रस्तुत है गजनी फिल्म से जावेद अली और सोनू निगम के आवाजों में। इस गीत को रचा है प्रसून जोशी ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। इन्हें नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह

आकाशवाणी का तवांग केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग के तहत आज आनंद लीजिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल का राग है बिमपलासा। तबले पर संगत दे रहे हैं शरीफ अहमद खान तथा सारंगी पर लियाकत अली खान।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर तवांग नगर पालिका के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज गुवाहाटी स्थित लोक सेवा भवन में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की। कहा दोनों राज्यों के बीच सहयोग तथा साझा विकास की भावना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राज्यसभा सांसद ताय तागाक ने प्रथम दिल्ली एवं NCR नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स मीट 2026 का उद्घाटन कर खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े, इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में विभिन्न क्षेत्र में तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजनाएं आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ाने सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है। यह पूर्णतः पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को समय पर पेंशन लाभ उपलब्ध कराना है। यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल गवर्नेंस के विजन के अनुरूप शुरू की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। लेखा एवं पेंशन विभाग के लिए विकसित यह प्लेटफॉर्म पूरी पेंशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करेगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी, देरी और त्रुटियों में कमी आएगी तथा पेंशन मामलों में रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और

0: वरिष्ठ जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तवांग नगर पालिका के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा की। बैठक में तवांग विधायक नांगे शेरिंग, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू, उपायुक्त नामग्याल आंगमो तथा जिला परिषद सदस्य तेंजिंग मोनपा और सोनम नोरजीचिन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आलो, जीरो, नामसाय और तवांग इन चार नगरों में नई नगर पालिकाओं के गठन के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है ताकि शहरी प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सके, नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके तथा योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बाल कल्याण उपायों में समीक्षा करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन, पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन तथा बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंच सके। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज गुवाहाटी स्थित लोक सेवा भवन में असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण और सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री मेन ने कहा है कि वे निरंतर सहयोग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सहयोग तथा साझा विकास की भावना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने प्रथम दिल्ली एवं NCR नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स मीट 2026 का उद्घाटन कर खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। सेवन सिस्टर्स फाउंडेशन द्वारा दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली NCR में रहने वाले उत्तर पूर्व समुदाय के बीच खेल भावना, एकता और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री तागाक ने कहा है कि खेल और संस्कृति राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं से समर्पण और अनुशासन के साथ खेलों को अपनाने का आह्वान किया। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
1: वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष के पहले ही तुलना में 10.1% अधिक है। सिक्किम में नथुला पास से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इससे 6 साल से ज्यादा समय में चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह भारत और चीन के अधिकारी नो मैन्स लैंड पर मिले। चीनी पक्ष का प्रतिनिधित्व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख ने किया, जिसमें उनके वाणिज्य और सीमा व्यापार विभागों के प्रतिनिधि शामिल रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 22 अन्य घायल हुए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले की ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा भी की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल से किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेह तय करने की मांग की है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश पल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन

0: चन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हगे आनी। Prime Minister Narendra Modi today said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA government.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुम लेरम के तहत सुनिए यूथ वेलफेयर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन सोसाइटी मुक्तो के लामा संगीत सेदर और साथियों से ड्रोइछो का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05।

मिनट पर 7:10 पर स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसके तहत आप सुन पाएंगे खंडरो रोवा जंगमो जिला अस्पताल तवांग के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर पेमा योटन से हुए एक साक्षात्कार। सुरो और धुनो के साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज के तहत आनंद लीजिए कश्मीर की कली और सिलसिला हे प्यार का फिल्मों से दो नगमों के साज और आवाज का आज शाम 7:30 पर। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। श्रोताओं, आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे, जिसमें शामिल है जंगली, एक सपेरा एक लुटेरा, पगला कहीं का और अभिनेत्री फिल्मों से चंद सदाबहार नगमे। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील आज रात्रि 8:15 पर। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल यानी 2 अगस्त 2026 के कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए अनी समतन वंगमो और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए चंद आधुनिक मणिपुरी गीतों का कल दोपहर 3:30 पर। कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए पीएम श्री जेएनवी तावंग के 9वीं कक्षा के छात्रा संगे छोजुम देरो से स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व विषय पर उनके विचार। महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत कल दोपहर 3:33 पर, जिसके तहत सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल, राप्ता फिल्म से आतिफ असलम, गुड बाय फिल्म से अमित त्रिवेदी, रॉय फिल्म से मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर, ओम शांति ओम फिल्म से के और आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के आवाजों में आनंद ले सकेंगे चंद नगमों का। श्रोताओं, कल शाम 4 बजे महिलाओं पर आधारित मासिक कार्यक्रम महिला जगत के तहत सुनिए शिक्षा संस्कार तथा शिष्टाचार विषय पर एक वार्ता। शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग के तहत आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार वादन का कल शाम 4:30 पर। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मुनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम के तहत सुनिए सेरू बस्ती के श्री लामा खंडू से मुनपा में लामा ड्रुकपा कुंडले नमथर का दूसरा भाग। दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में श्री संगे टाशी से कल शाम 5:30 पर। 5:35 पर साप्ताहिक कार्यक्रम मुनपा कार्यक्रम रिक्शुंग लेरिम के तहत सुनिए सुंघापा स्कूल लुंगला के प्रधानाचार्य श्री थुतन टाशी से छठे दलाई लामा की कविताएं पारंपरिक मुनपा क्षेत्र के लोकगीतों में किस प्रकार प्रतिबिंबित होती है। लेरिम सेरा कल शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर जमयम छोकुरलिंग मठ के

उमजे थुपतेनवांगचु और साथियों से सुनिए यीदम तमजिन कुक डखंग शेदुन लेरिम के तहत आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली के तहत आनंद लीजिए नुसरत फतेह अली खान सुखविंदर सिंह मुर्तुजा मुस्तफा और कादिर मुस्तफा के आवाजों में चंद कव्वालियों का साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ के तहत सुनिए कानू घोष और नलिनी से उर्दू भाषा की कविता सारे जहां से अच्छा का पाठ कल शाम 7:25 पर कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए वीर जारा फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण गुरदास मन तथा प्रीता मजुमदार की आवाजों में एक देशभक्ति गीत का आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8 बजे कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज 8:09 कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे श्रोताओं अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल के कार्यक्रमों के बारे में इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: मिलियम वेब किलोर चेचिले निकली थी मीटर ग्याजिक निकली चीनिस का उच आकाशवाणी तवांग इंबुर लंगी लंग दिख चुसे क्रोनिक कर्मा खिलोनी दनुमीन वतो शेदन लेरिम सिकोसतुर देशुत लेरिमा मोक्तो युक लम संगीत सितार से क्रिसो शुनी तितुन ग्यूजन जिंजो सोखो से तोनो ड्रेचो दंग संगमचिकमार मुथिये सनासा
1: Om Namo Shivaya.

Jump,

Yeah,

Mamma,

Yeah, I'm not going to be able to do that.

Oh, my God.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे।

इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम जुआल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: floods during the ongoing southwest monsoon. Out of the seven affected states, Himachal Pradesh, Odisha and Nagaland had earlier received the first installment of SDRF for the financial year 2026-27. The Union Government today released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for 10th of August. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kg cylinder today. The new price of a commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees, while in Kolkata, it will now be 2,872 rupees and 50 paise. In Mumbai, it will be 2,691 rupees and 50 paise, and in Chennai, 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. The decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Speaking on the occasion, Mr. Shah said Ajit Doval has made an outstanding contribution to strengthening India's national security. Accepting the honour, Mr. Doval said he was deeply humbled by the recognition. He said freedom is not merely the liberty to act as one wishes, but a responsibility to place national interest above all else. The Indian Army paid its final tribute to General Vishwanath Sharma, retired, a former chief of the Army staff. General Sharma's last rites were conducted with full military honours today in New Delhi. He passed away yesterday morning in New Delhi at the age of 97. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, India's Soman Rana won the gold medal in men's shot put F57 para-athletics with a best throw of 13.4 metre. India registered a double podium finish in the event as Shubham Juyal claimed silver, finishing just behind compatriot Soman Rana. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार. आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय संध्या के 7:10 हुए हैं. लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा. कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत आज सुनिए खंडरो ध्रुवा जम्मू जिला अस्पताल तावंग के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर पेमा यूटन से होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली और उपचार विषय पर हुए एक साक्षात्कार. साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तावंग की हिंदी उद्घोषिका तुलसी ड्रमा.
2: नमस्कार श्रोता, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ. श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में है खंडो ड्रोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के होम्योपैथी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पेमा यूटन. तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में और कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में हार्दिक स्वागत करती हूँ.
3: थैंक यू.
2: हमारे आज के जो चर्चा है इसकी विषय रहेंगे होम्योपैथी चिकित्सा क्या है और इसकी इलाज किस तरह के होते हैं, इस बारे में हम डॉक्टर साहिबा से चर्चा करेंगे और आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे. आप हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमारे आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले है. तो डॉक्टर साहिबा, आप हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आपसे अपने बारे में कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपने आगे जाकर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है कहाँ से पूरी की थी और चिकित्सा अधिकारी के रूप में आपके पास कितने सालों के अनुभव है, इस बारे में आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए.
3: जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर पेमा यूटन है. मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर होम्यो काम करती हूँ खंडोरोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में. तो मैंने अपने स्कूलिंग 10th क्लास तक सेकेंडरी स्कूल जंग से किया है. देन हायर सेकेंडरी के लिए मैंने तवांग हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है. उसके बाद फिर कलकत्ता से मैंने होम्योपैथी का अपना डिग्री लिया. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं वापस आके तवांग डिस्ट्रिक्ट में मैंने एनआरएचएम के अंडर में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया था. तो मेरा पीएचसी लुमना में थी, मैं उस समय

0: मैं पीएससी में थे, सीएससी में अपग्रेडेशन नहीं हुआ था उस समय में। वहां में मैंने एक साल तीन महीने जैसे काम किया, इसके बाद फिर मेरा जॉब रेगुलर होके मेरा फर्स्ट पोस्टिंग एज ए रेगुलर मेडिकल ऑफिसर मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेजू में वहां में काम किया। तो वहां में मैंने अराउंड 10 साल वहां में काम करके फिर 2021 को मैंने वहां से ट्रांसफर लेके खंडोडोवा जाऊ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में ज्वाइन किया है।
1: डॉक्टर साहिबा, हमारे आज के इस चर्चा के विषय मैंने पहले से बता रखी है, तो सबसे पहले अब हम आपसे जानेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा क्या है और इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई थी और इसके महत्व के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: जी, होम्योपैथी आप सभी ने कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, या बहुत लोग ने इसका ट्रीटमेंट भी लिया होगा, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। जानने की उत्सुकता भी रहती है कि ये क्या सिस्टम है, कि हमको समझ में नहीं आता है, तो बहुत लोगों को अवेयर नहीं भी है और बहुत लोग जानते भी है। तो एक्चुअली होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि हमारे यहाँ में स्पेशली जो हमारे एरिया में उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर मैं शुरुआत में कहूँ तो जिसे आपने कही एक कहावत सुना होगा कि लोहा लोहा को काटता है, तो उनका प्रिंसिपल भी कुछ इस तरह से ही है कि लाइक क्योर्स लाइक। आपने एक कुछ एक सब्सटेंस खा दिया, सपोज एक कॉफी पी दिया एग्जाम्पल, तो कॉफी पीने के बाद आपको क्या फील होता है? फ्रेश फील होता है, तो आपको अच्छा लगता है। उसी कॉफी को अगर एज ए दवाई यूज किया जाए, एज ए मेडिसिन डिजीज में भी काम किया जा सकता है, तो उसी प्रिंसिपल पर ये बनाया गया है। तो ये इनका जो फर्स्ट होम्योपैथी का जो शुरुआत हुआ था जर्मनी में हुआ था, एक डॉक्टर थे डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन है उनका नाम, वो एलोपैथिक चिकित्सक ही थे।
1: हाँ जी।
0: तो उन्होंने एलोपैथी का पूरा शिक्षा पूरी करके जब प्रैक्टिस में आए तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे 1989 की बात है। विद प्रैक्टिस उस समय के कुछ मेडिकल आर्टिकल्स को वो ट्रांसलेट भी करते थे। तो उन्होंने एक डॉक्टर विलियम क्यूलियन थे, तो उनका एक मेडिकल जर्नल था, मतलब आर्टिकल था, उनको जर्मन में ट्रांसलेट करना था। तो वो ट्रांसलेट करते करते उनको ये एक चीज पता चला कि सिंकोना एक मेडिसिन होता है, वो सिंकोना मलेरिया का ट्रीटमेंट में उस समय यूज होता था। तो जब उन्होंने ये ट्रांसलेशन शुरू किया तो उनको पता चला कि सिंकोना बार्क इसलिए मलेरिया को क्योर करता है क्योंकि वो तीता होता है बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस। तो उनको ये बात बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, कुछ चीज बिटर है इसलिए उसका मलेरिया क्योर हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वही सेम सिंकोना जो मेडिसिन था, तो उसने सिंकोना का जो बार्क है, जो सिंकोना ट्री है, उसका बार्क को उन्होंने पीस के खुद खा के देखा, पूरा उसको सिम्टम्स आने लगा, जैसे कि फीवर, शिवरिंग और जॉइंट पेन, जो कि मलेरिया का सिम्टम्स होता है, तो वो सेम सिम्टम पूरा उसको बॉडी में डेवलप हो गया। तो उसके बाद से उनको ये लगा कि आप एक बार ड्रग्स या कोई मेडिसिन का इफेक्टिवनेस को जानने के लिए आप उसको अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में खाएंगे या उसको सेवन करेंगे तो उसी ड्रग का आपका सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी का शुरुआत हुआ है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे रिसर्च करके फिर बहुत सारा मेडिसिन अपने ऊपर, तो उन्हें ड्रग ट्रायल किया, तो ट्रायल उनका जो हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता था, तो इसलिए इसी को लॉ ऑफ सिमिलर्स भी कहते हैं।
1: तो इसी तरह से होम्योपैथी चिकित्सा की खोज हुई थी।
0: जी।
1: और भारत में कब से इसकी शुरुआत हुई थी?
0: भारत में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से जर्मनी से आके, फिर उस समय राजा महाराजाओं का समय था तो वो अपने प्राइवेट चिकित्सक रखते थे, तो ऐसे करके अराउंड 19th सेंचुरी में इंडिया में तो आ चुका था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिकॉग्नाइज करके जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कि ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज ए सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, वो है 1973 को।
1: क्योंकि कोई कहता है एलोपैथी चिकित्सा बहुत अच्छी है, तो कोई कहता है कि होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या फिर सवारी बहुत अच्छे है। तो अब जितने ज्यादा लोग उतने बातें तो होंगे और हमें एडवाइस देने वाले तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन ये सबसे जरूरी है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही रहेगा और इसको जानने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि इन सभी में फर्क क्या है, है ना? तो डॉक्टर साहिबा, अगर हम आपसे सवाल करें तो होम्योपैथी चिकित्सा के अंतर्गत किन रोगी के लिए किस तरह के इलाज होते हैं?
0: देखिए, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो एक ही चीज में सीमित नहीं है, आप इसमें नहीं दे सकते, उसमें नहीं दे सकते, इस तरह से नहीं है, सब चीज में दे सकते हैं, बट उनका अपना एक लिमिटेशन है।
1: हाँ जी।
0: तो वो लिमिटेशन में आता है जो प्योरली सर्जिकल केसेस है। जब हमने पढ़ाई किया तो हमको ये बताया जाता है कि जो प्योरली सर्जिकल केस है, जैसे आप किसी का कोल्ड ब्लडर बड़ा स्टोन होकर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें आप अगर दवाई देने लगेंगे तो वो नहीं क्योर होगा, तो उसमें आपको सर्जरी ही लगेगा। जैसे आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, एपेंडिसाइटिस

0: का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है उसमें अगर आप दवाई देने जाएंगे तो वो नहीं क्योर होगा, वो प्योरली सर्जिकल केस है, उसको सर्जरी लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से लिमिटेशन है, हर सिस्टम का अपना एक लिमिटेशन होता है, उसी लिमिटेशन और उसी के अंतर्गत ही काम करना होता है। तो उसमें आपका लिमिटेशन में जिसका एलोपैथिक सिस्टम हो या आयुर्वेदिक सिस्टम हो, सब सिस्टम क्या करता है, इनिशियल जो पढ़ाई होता है सबका सेम होता है, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी उसमें अंतर यही होता है दवाई जो इसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं, फार्माकोलॉजी सबका अलग होता है, हर सिस्टम का फार्माकोलॉजी अलग होता है। एलोपैथी का फार्माकोलॉजी अलग है, हमारा फार्माकोलॉजी अलग है, फिर आयुर्वेदिक का अलग है, सोरेप का अलग होगा। इस तरह से आपका सिर्फ मेडिसिन में डिफरेंस होता है, अदरवाइज पढ़ाई में कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम पढ़ाई होता है, उतना ही कोर्स ड्यूरेशन रहता है, जैसे आपका 5.5 ईयर्स रहता है कोर्स का, उस तरह से होता है।
1: जी, और अगर मैं इमरजेंसी और ट्रॉमा स्थितियों के बारे में बात करूं, तो अगर किसी को इमरजेंसी है, खून बह रहे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, तो उस दौरान एक अस्पताल में कई तरह के डॉक्टर होते हैं, जैसे एलोपैथिक के होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं या सवारिकपा के होते हैं, तो उस समय तुरंत इलाज के लिए किसके पास जाना सही रहेगा?
0: जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सिस्टम में कुछ कुछ लिमिटेशंस होता है, ये एक लिमिटेशन ये भी है, हमारा इमरजेंसी जो मैनेजमेंट होता है उसमें हमें लिमिटेशंस है। तो उस लिमिटेशन के अंतर्गत अगर जैसे आपको एक्यूट केसेस हुआ है, उसमें यूजुअली एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप जाके चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक्यूट मैनेजमेंट होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उनका एक्यूट का भी एक टाइम बाउंड या पर्टिकुलर उसमें होना चाहिए।
2: और अगर हम हमारे जिला अस्पताल तवांग के बारे में चर्चा करें, तो सबसे ज्यादा किस तरह की समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं ज्यादातर?
0: देखिए, मैंने जब तेजू में काम किया था, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, उसमें बहुत सारे केसेस आते थे, क्योंकि वो है थोड़ा प्लेन एरिया है, गर्मी है, तो केसेस भी अलग आते हैं और उस हिसाब से पेशेंट नंबर भी बहुत ज्यादा है। तवांग में मैंने जिसे यहाँ में आया उसके बाद देखा, मैंने यहाँ में ज्यादातर स्किन के प्रॉब्लम्स लेके बहुत ज्यादा लोग आते हैं, स्पेशली जो वार्ट्स लेके, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में चेयर कहते हैं, तो सब बहुत लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी ओनली वार्ट्स के लिए है, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है, होम्योपैथी हर चीज के लिए है। तो मेरे पास जो अभी फिलहाल मैंने जो यहाँ में आके जब ज्वाइन किया, तब से मैंने स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा, और जो बहुत लोग पाइल्स के प्रॉब्लम लेके आते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बच्चे भी आते हैं, और ठंडा जगह है, पहाड़ी इलाका है, तो जी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये सब लेके बहुत आते हैं।
1: जी, और जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी चिकित्सा जो है आमतौर पे त्वचा की समस्या के लिए ही काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ के लोगों में शायद होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर जागरूकता की कमी है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं?
0: कारण बोलूं तो मैं अभी जैसे जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा और भी मीन्स इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, उसमें भी थोड़ा सा हमको कमी जैसा लगता है। और जैसे अभी वहां से जो ड्रग डिस्पैच करते हैं मेडिसिन, तो टाइमली डिस्पैच नहीं होता है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं कराते हैं, तो वो सब भी एक बड़ा कारण है। और एक हमारे यहाँ में हमने कभी भी अवेयरनेस कैंप्स नहीं करते हैं गांव में जाके, विलेज लेवल में जाके, मैंने या मेरे प्रीवियस जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अगर कुछ अवेयरनेस कैंप्स या होता या करना चाहिए मेरे ख्याल से, तब जाके लोगों को जाके, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आके पूछते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे जो होम्योपैथिक दवा यूजुअली आप जानते हैं कि वो एक मीठा गोली जैसा, तो सब लोगों को लगता है कि इसमें दवाई नहीं है, तो हम उसमें दवाई देते हैं, वो मीठा गोली उसको व्हीकल कहते हैं, तो दैट इज एक मीन्स है दवाई को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए, तो एक जेंटल मीन्स कहते हैं, कोई और एक्स्ट्रा जो मैन पावर है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसे अभी यहाँ में मैन पावर की बहुत कमी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं सिंगल होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, तो उसमें भी कमी हो जाता है, तो इस तरह से अवेयरनेस कैंप्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और यूजुअली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आयुष का अपना अलग ब्लॉक रहता है, आईपीडी रहता है, जहां में पेशेंट एडमिट करके रख सकते हैं, तो उसमें होम्योपैथिक सिस्टम या आयुर्वेदिक सिस्टम जो भी हो सिस्टम के अंतर्गत मेडिसिन दे के पेशेंट को एडमिट करके ठीक करते हैं, तो वो सब भी कमी है यहाँ पर।
2: जी जी, और जैसे कि आप जिला अस्पताल तवांग में केवल होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में

0: तो हमारे तवांग जिला के अंतर्गत और भी कई जगह पर सीएचसी है, पीएचसी है, तो ऐसी जगहों पर कोई और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी लाल कार्यरत है?
1: पीएचसी सीएचसी में कम है, लेकिन जैसे अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है आरबीएस के, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूट हुए है, तो वो भी ग्राउंड में काम करते है, लेकिन वो एज ए होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं काम करते, तो वो ज्यादातर आपका स्कूल हेल्थ रिलेटेड वो सब उसमें एंगेज है, तो वो एज ए होम्योपैथी का काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर का काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाके मेडिसिन दे, तो उसमें काफी लूपहोल्स है। आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स जो प्रोग्राम्स है उसमें काफी लूपहोल्स दिखाई पड़ता है।
0: जैसे कि आप जब औषध निर्देशन देते हैं लोगों को, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दवाइयाँ लेने के समय कब कब रहती है? भोजन करने से पहले दवाइयाँ लेनी होती है या फिर भोजन के बाद दवाइयाँ लेनी होती है? और साथ साथ एक बात और आपसे पूछनी है कि किसी के एक होते हैं आदत एलोपैथी के भी दवाइयाँ ले रही होती है और साथ साथ होम्योपैथी के भी लेते हैं, तो उसमें कोई रिएक्शन होने की संभावना रहते हैं?
1: देखिए, ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो बहुत जनरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो उनका जो मेडिसिन बनाया इस तरह कि हमारे बॉडी को लीस्ट हार्म हो, तो उस हिसाब से जिस अगर मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में बहुत कम देते हैं, क्रूड फॉर्म में नहीं देते, उसको पोटेंटाइज करके उसका पावर बहुत कम करके देते हैं, इसलिए इसमें हानि होना बहुत कम रहता है, बहुत हानिकारक उतना नहीं रहता है या साइड इफेक्ट नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। तो इसलिए आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक कोई अगर खा रहा है तो उसमें हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं, एलोपैथिक देखिए अभी कोई कोई शुगर का पेशेंट हो या प्रेशर का बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खाना होता है, तो इमिडिएटली हम उनको नहीं स्टॉप करा सकते, तो इन द मीन टाइम अगर वो कुछ और मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो हम उनको अलाउ करते हैं, बस ये कहते हैं कि आप टाइमिंग अलग मेंटेन कीजिए। तो यूजुअली होम्योपैथिक मेडिसिन एम्प्टी स्टमक में खाना होता है, खाना खाने के आगे, और इसमें जैसे आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं तो आपको बहुत एसिडिक चीज ये सब मना रहता है, जैसे आप नींबू खा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, वो सब मना करते हैं क्योंकि उसमें दवाई का एफिकेसी कम होता है कहते हैं
0: जी। और आपने बताया कि होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम रहते हैं, लगभग ना के बराबर रहते हैं, तो अब मुझे भी जानने की उत्सुकता हो गई है और हमारे श्रोताओं को भी शायद इस बारे में जानने की उत्सुकता होंगी कि होम्योपैथी की दवाइयां आखिर बनते कैसे हैं, किन चीजों का उपयोग होते हैं?
1: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उनका सोर्स बेसिकली तीन सोर्सेस से आता है, एक प्लांट किंगडम से आता है जो प्लांट से बनाते हैं, एक एनिमल किंगडम से जो एनिमल प्रोडक्ट से बनाते हैं, और एक मिनरल्स से बनाते हैं। जैसे अब मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी, एक नेट्रम यूरेटिकम एक मेडिसिन रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आपका जो हमारा टेबल सोल्ट है उससे बनता है, टेबल सोल्ट तो ये मिनरल में आता है। जैसे अभी हम एक एकोनाइट प्लांट है तो उससे मेडिसिन बनाता है, एक एकोनाइटम नेपालस मेडिसिन है, ये एकोनाइट से बनाता है, जो एकोनाइट जो हमारे जो लोकल लैंग्वेज में इसको चंदो कहते हैं, चंदो, तो उसका है वो पॉइजनस चीज, लेकिन उसको पोटेंटाइज करके उसका पोटेंसी इतना कम करके उसको एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है। और एक मशरूम का होता है एगरिकस मस्कस जो मशरूम से बनाता है, और एक है रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन से भी मेडिसिन बनाता है, तो रोडोडेंड्रोन जो हम लोग उदुमेंटो बोलते हैं, उदुमेंटो, तो इस तरह से हर तरह का एनिमल प्रोडक्ट से भी बनाता है, मिनरल से भी बनाता है और प्लांट प्रोडक्ट से भी बनाता है।
0: जी जी, और हमें ये भी जानकारी मिली थी कि साल 2014 में सरकार ने नेशनल आयुष मिशन नामक एक योजना की शुभारंभ की थी, तो इसके पीछे की मकसद क्या है?
1: जी, जब नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर पद संभाला उसके बाद से उन्होंने ये नया स्कीम लॉन्च किया था, ये नेशनल आयुष मिशन, ये स्कीम लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2014 में। इसको लॉन्च करने के पीछे ये मकसद ये था कि जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि इतना अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो उसी को आगे लाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था कि जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको एट पार एलोपैथिक या कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का साथ लाना है, तो उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया था अराउंड 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ऑपरेशनल हो रहा है। फिर इनका जो मोटिव है नेशनल आयुष मिशन में ये होता है, फर्स्ट आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना, जैसे अभी जहां में प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत लोगों को जो अवेयरनेस की कमी है उसको अवेयरनेस देना, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो मेडिसिन है उसको कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब एक गरीब से गरीब भी

0: मेडिसिन ले पाए, जो अभी गरीब है जो बहुत दामी वाला मेडिसिन नहीं ले पा रहे, तो वो इस सिस्टम को ले, इस तरह के मेडिसिन ले। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग्स, तो जो क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल करना, वो भी उनके नेशनल आयुष मिशन में आता है। और आयुष एजुकेशन सिस्टम जो मेडिकल कॉलेजेस है आयुष का, उनको आपका स्ट्रेंथनिंग और अपग्रेडेशन करना है, और एजुकेशनल जो सिस्टम्स है और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड करना है, और हर पीएचसी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में आयुष डिस्पेंसरीज और आयुष हॉस्पिटल को लोकेट करना, उनको साथ में लेके चलना है। अच्छा। ये इनका मोटिव था
1: जी। डॉक्टर साहिबा, हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो समय है समाप्त होने जा रहे हैं, तो अंत में हम आपसे ये एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि फिलहाल आप जिला अस्पताल तवांग में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है, और अब तक आपने कितने रोगी को इलाज किए हैं?
0: देखिए, मैंने कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जैसे मंथ में एवरेज में अराउंड 100 to 150 पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उसमें बहुत लोग फॉलोअप के लिए आते हैं, जिसे हमारे यहाँ में फॉलोअप सिस्टम होता है, क्योंकि जो क्रोनिक मेडिसिन डिजीज के लिए आते हैं तो उनको फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। जैसे मैंने एक महीने का दवाई दिया, तो उस महीने का दवाई खत्म करके फिर वो आते हैं, आके फिर पेशेंट बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बेटर है नहीं है, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो फॉलोअप प्लस न्यू केसेस मिला के अराउंड 100 to 150 में आ जाता है।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहिबा, आज आपने आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकाल कर आए, और हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी चिकित्सा क्या है और इसमें किस तरह के इलाज किए जाते हैं और होम्योपैथी के दवाइयाँ किन चीजों से बनते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना खंडो ड्रुवा जंगमो जिला अस्पताल तवंग के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर पेमा युटुन से होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली और उपचार विषय पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 होने वाले हैं, तो आइए अब आरंभ करते हैं सुर और धुनों के साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज को, जिसके तहत आज हम आनंद लेंगे कश्मीर की गली और सिलसिला है प्यार का फिल्मों से दो गीतों के साज और आवाज का। तो लीजिए प्रस्तुत है कश्मीर की गली फिल्म से पहला साज, जिसे सवारा है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम साज और आवाज का दूसरा साज प्रस्तुत है सिलसिला है प्यार का फिल्म से, जिसे सवारा है जतिन और ललित ने।

श्रोताओं आनंद लीजिए इस गीत का। अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में इस गीत को शब्द दिया है समीर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया कश्मीर की गली और सिलसिला है प्यार का फिल्मों से दो गीतों के साज और आवाज का। इसी के साथ ही सुर और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। अब से जल्दी पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कड़े दंड का प्रावधान तथा फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करना है। साथ ही एक सशक्त कानूनी ढांचा तैयार कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना तथा विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करना है। कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा दोषियों की संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर्ज हस्तांतरित की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त दी गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास संबंधी खर्चों में तेजी लाने के लिए अधिक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ोसी राज्य असम को सबसे अधिक 3,552 करोड़ रुपए, जबकि अरुणाचल प्रदेश को 1,474 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई भविष्य पेंशन स्वीकृत एवं ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। यह पूर्णतः पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन लाभ उपलब्ध कराना है। यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल गवर्नेंस के विजन के अनुरूप शुरू की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। लेखा एवं पेंशन विभाग के विकसित ये प्लेटफॉर्म पूरी पेंशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करेगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी, देरी और त्रुटियों में कमी आएगी तथा पेंशन मामलों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सके।

0: देगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR का दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज तवंग जिले के कालावंगपो कन्वेंशन हॉल में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से बाल अधिकारों को और मजबूत करने की नई प्रगति के साथ संपन्न हुआ। समापन सत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि सम्मेलन की सिफारिशें अगले दो दशकों के लिए बाल अधिकारों से जुड़ी नीतियों और संस्थागत तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने सर्वोत्तम अनुभव साझा किए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, बाल संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा बच्चों के समग्र कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर तवांग नगर पालिका के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा की। बैठक में तवांग विधायक नामगी शेरिंग, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बो, उपायुक्त नामग्याल आंगमो तथा जिला परिषद सदस्य तेंजी मोनपा और सोनम नोरजीन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आलो, जीरो, नामसाई और तवांग इन चार नगरों में नई नगर पालिकाओं के गठन के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है ताकि शहरी प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सके, निगरानी सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज गुवाहाटी स्थित लोक सेवा भवन में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण और सार्थक चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री मेन ने कहा है कि वे निरंतर सहयोग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सहयोग तथा साझा विकास की भावना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद ताय तारक ने प्रथम दिल्ली एवं NCR नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स मीट 2026 का उद्घाटन कर खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। सेवन सिस्टर्स फाउंडेशन द्वारा दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली NCR में रहने वाले उत्तर पूर्व समुदाय के बीच खेल भावना, एकता और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों तवांग, रादादी, अपर सुबनसिरी, शियोमी, सियांग और दिवांग वैली को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, लेपारादा, ईस्ट सियांग और लोहित के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar. The news read by Hageyani. President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public exams by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. The Union Government today released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for August 10. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. According to the state-wise breakup released by the Finance Ministry, Uttar Pradesh received the largest share at 19,208 crore rupees. In North East, Assam got the highest allocation at 3,552 crore rupees, followed by Arunachal Pradesh at 1,476 crore. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kg cylinder today. The new price of a commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees. The price of a 19 kg commercial LPG cylinder in Kolkata will now be 2,872 rupees and 50 paisa. In Mumbai, it will cost 2,691 rupees and 50 paise, and in Chennai, 2,960 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. The Arunachal Pradesh government has rolled out the e-Bhavishya pension sanction and tracking system, a paperless platform to streamline pension.

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से एक गीत का। इसी के साथ ही कार्यक्रम कौमेता राने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे है, यानी वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा वचक के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो आइए कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत को शुरू करते हैं। वादिन खेरा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोरा और मुरादाबाद दोनापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह के फरमाइशी नगमे के साथ, जो कि है जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, दूसरा नगमा कार्यक्रम का प्रस्तुत है नलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र के पीएस नवघर, निर्मला नवघर और विशाल नवघर तथा मलकापुर से नारायण इंगले, सोपन तयारे और आशीष मुरहेकर के फरमाइश पर। यह नगमा है एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से मोहम्मद रफी के आवास में। इस गीत के गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीतकार उषा खन्ना।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अगला नगमा ये सुनते हैं पगला कहीं का फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और इस गीत की फरमाइशें हमने प्राप्त किए हैं ततरंगी भटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, परस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा से तथा मालवा रेडियो श्रोता संघ हिमगिरी रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश ढाकर नेमा, रंजू भाई ढाकर, युवराज सिंह ढाकर और शिवांगी ढाकर से। लीजिए प्रस्तुत है आपका फरमाइशी नगमा पगला पगला कहीं का फिल्म से।

जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वाजिब फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। इनके अलावा भी हमने फरमाइशें प्राप्त किए खलीफों की बावरी के खुदा बख्श खलीफा से, रामदेवरा के दिनेश चौहान से, गांधी चौक बलमेर राजस्थान के बबलेश पनवार, डैनी पनवार और मनीष पनवार से भी, जो समय की पाबंदी के कारण हम प्रसारित नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। लेकिन आप हमें फरमाइशें भेजते रहे सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 6033914908 पर अपने नाम, पता, गीत की बोल और फिल्म के नाम के साथ, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए आज नहीं तो कल सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ है प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स सेन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स सेन के साथ खेल की हर बात।

0: शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन आज भारत ने 3 स्वर्ण सहित अब तक 7 पदक जीते। बॉक्सिंग में आज 7 और भारतीय खिलाड़ी फाइनल में उतरेंगे। भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम 5वें स्थान पर रही और गुवाहाटी में डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीत के साथ शुरुआत की।
1: खेलों के आज 10वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में अब तक 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया है। पैरा शॉटपुट के F57 वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। पुरुष ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का
3: भारतीय मुक्केबाजों से जैसी उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत मिली। महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड देश को दिलाए। पहले प्रीति पवार और फिर जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्डन पंच लगाए। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से फाइनल बाउट जीती। SEC हॉल 5 में पहले राउंड में सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए। दूसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने सभी जजों से पूरे अंक हासिल किए। एक ओर प्रीति के हर एक पंच में दम दिख रहा था तो दूसरी तरफ डेलगाडो के पंच सही लैंड नहीं हो रहे थे। तीसरे राउंड में फिर प्रीति ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी 5 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए गोल्ड सुनिश्चित किया। उन्होंने इस गोल्ड को खास बताया।
4: I am really excited and so happy that I won gold medal here. I just gave my best. Definitely, I am aiming for LA 2028 and I hope and wish that I'll be part of LA 2028 and give my best for India. Thank you.

0: much everyone for supporting me and motivating me. Keep supporting, keep motivating me.
1: वहीं जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दर्न आइलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहला राउंड 3-2 से जैस्मीन के पक्ष में रहा था, लेकिन अगले राउंड में जैस्मीन पूरी तरह से विपक्षी बॉक्सर पर हावी नजर आई और पांचों जजों ने फैसला उनके पक्ष में दिया। जैस्मीन ने तीसरा राउंड भी 4-1 से अपने नाम करते हुए देश को 7वां गोल्ड दिलाया। उन्होंने यह पदक देश को समर्पित किया।
2: I want to dedicate to my country India and the people who supports me throughout my whole journey. This is first time in Commonwealth Games and we create a history. We all are

0: लेकिन पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह मानदेन गबम का जादू ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर जॉय डिस्किन के खिलाफ नहीं चला। जादूमणि ने अच्छी शुरुआत की और पहले राउंड में 3-2 से जीत हासिल की, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। दूसरा राउंड ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर ने 5-0 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में एक बार फिर विरोधी मुक्केबाज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत हासिल की। इस हार से जादूमणि को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
1: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
0: उधर आज रात महिला 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन भी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है लवलीना ने फाइनल मुकाबले से पहले।
2: फाइनल के लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ तो फाइनल और भी ज्यादा टफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार गोल्ड लेके जा सकती हूँ क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है तो जरूर इस बार गोल्ड ले पाएंगे।
0: एथलेटिक्स में भी आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। दिन का तीसरा गोल्ड एथलेटिक्स से ही आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल भी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहे, शुभम को 13.28 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की लंबी छलांग भरते हुए रजत पदक पे अपना नाम लिखाया। उधर सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने 16.52 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। हम आपको बता दें कि पैरा स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने का लंबा इंतजार खत्म हुआ और 3 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य समेत 6 पदक झोली में आए। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। पैरा खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 1 गेम्स रिकॉर्ड और 1 एशियन रिकॉर्ड बनाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
3: और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को बॉक्सिंग में अभी और स्वर्ण पदकों की उम्मीद है। महिला वर्ग में कुछ ही देर में साक्षी 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रिंग में उतरेंगी। प्रिया 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। पुरुषों के वर्ग में सचिन 60 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगे। पुरुषों के पोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स 4x400 मीटर रिले में भारतीय टीम पदक जीतने की कोशिश करेगी। जूडो में उन्नति शर्मा महिला 63 किलोग्राम और हर्ष टोकस पुरुष 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। बॉल्स में महिला सिंगल्स के सेक्शनल ग्रुप सी के सेक्शन सी में नैनमोनी सैकिया दक्षिण अफ्रीका की ब्रिजेट हर्सेल मान से मुकाबला करेंगी।
4: वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में कल 9वां दिन भी भारत के लिए बेहद यादगार रहा। खासकर जूडो खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इंजरी से वापस लौटे नीरज चोपड़ा ने भी जैवलिन थ्रो में बेहतर प्रदर्शन किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का इंतजार था। इस लंबे इंतजार को आखिरकार अस्मिता डे ने खत्म किया। त्रिपुरा की 23 वर्ष की अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए कनाडा की हेडी क्वाच को हराया। मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने 1 अंक गंवाया और

0: पेनल्टी भी मिली, लेकिन आक्रामक खेल जारी रखते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। गोल्डन स्कोर में अस्मिता ने निर्णायक अंक हासिल कर इतिहास रचा। अस्मिता ने बताया कि उन्हें गोल्ड जीतने का पहले से भरोसा था।
1: मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे से ज्यादा कोई स्ट्रांग है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
0: जूडो में ही 23 साल के हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को वाजा अरी से हराया। 4 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को अंक नहीं मिले, लेकिन अंतिम मिनट में हर्ष ने निर्णायक दांव खेलकर बढ़त बनाई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। गोल्ड जीतने के बाद हर्ष काफी उत्साहित थे।
2: आई वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टुडे फॉर विनिंग गोल्ड हियर।
0: महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक के खिलाफ हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। करीब 7 मिनट तक चले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अंक नहीं बना सका, लेकिन मैच में तीसरी वार्निंग मिलने के कारण यामिनी को शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर तक भाला फेंका। अपने इस प्रदर्शन से नीरज संतुष्ट नजर आए।
3: मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है, आज सिल्वर मेडल है और अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे-धीरे और बढ़ाएं।
0: इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। कठिन मुकाबले के बीच कांस्य जीत कर भी यशवीर खुश दिखाई दिए।
4: मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज्यादा खुशी है, सभी ने सपोर्ट किया, परिवार ने, पापा मम्मी, सभी मेरी फैमिली ने।
0: एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर ने 10 अलग अलग इवेंट्स वाले डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा है। वो कॉमनवेल्थ में इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी बातों से इस मेडल का महत्व समझा जा सकता है।
5: Years ago, I had a bronze in the high jump, and 4 years later, to be able to win a medal in the decathlon, I think it's just a dream come true. There's a lot of scope for improvement, and between now and LA, that's the goal, is to try and, you know, fix those events, get them up to standard, and hopefully be competitive there.
0: हम आपको बता दें कि 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ वाले सभी इवेंट के आधार पर टोटल रैंकिंग बनती है। इस रैंकिंग के टॉप 3 प्लेयर्स को मेडल दिए जाते हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
6: उधर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
7: और प्रशांत, अब कॉमनवेल्थ गेम्स से चलते हैं दूसरे खेलों की तरफ। भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में यू सुन को हराया। वे टूर्नामेंट में अब एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन की नई उम्मीद तन्वी ने BWF सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत के खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज ताइपे अरेना में दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी तन्वी ने अपनी सी काफी ऊंची रैंकिंग वाली पांचवीं वरीयता प्राप्त वांग यू सुन पर सिर्फ 33 मिनट में आसानी से 21-17, 21-11 से जीत हासिल की और शान से खिताबी मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। खिताब के लिए कल उनकी टक्कर वियतनाम की गुयेन थुई लिन से होगी। अंतिम चार के मैच में तन्वी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आई और उन्होंने यू सुन पर एक बार जो पकड़ बनाई तो फिर विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही तन्वी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है। खासकर पिछले 2 वर्षों में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पिछले साल वे ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 दोनों टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज खिताब भी जीता था।
6: और अब धर्मेंद्र स्क्वॉश पर भी बात कर लेते हैं। कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 5वें से 6वें स्थान के प्लेऑफ में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमिसी को 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद सानवी कलंकी ने इव पार्किंग पर 11-6, 11-9, 11-9 से जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था।
7: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल

0: चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में चारों स्थानों पर कब्जा किया। अब सभी अंतिम चार मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के चारों स्थान पर कब्जा कर लिया।
1: और अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज पिछले विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ के शुरुआती मुकाबले में बोडोलैंड एफसी को 6-0 से हराया। विजेता टीम के लिए अलाउद्दीन अजराई ने हैट्रिक लगाए। बेहतरीन प्रदर्शन किया है धर्मेंद्र गुवाहाटी में खिलाड़ियों ने।
0: जी, और अब तो समय यह भी कह रहा है कि श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चला है। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र और मेरे साथी प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के

0: विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक

0: परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
4: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
3: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में

0: प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram.

0: Sukhmand, we have congratulated the medal winners with Vikas Churagja from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के नगमों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। महिलाओं पर आधारित मासिक कार्यक्रम महिला जगत कल शाम 4 बजे। शाम 5:35 पर साप्ताहिक मुंपा कार्यक्रम रिक्शुम लेरिम। साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली कल शाम 7:10 पर तथा रात्रि 8 बजे आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री थुतनटाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री